स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भोर सुहानी कार्यक्रम में। समय हुआ है 5:31 और 18 सेकंड। भोर सुहानी धीरे धीरे अपने खूबसूरत से रूप में आ रही है, तो क्या आप उसका स्वागत नहीं करेंगे? स्वागत तो हम भी कर रहे हैं आपका, तो जनाब जल्दी से उठ जाइए और भोर सुहानी का लुत्फ लीजिए, प्रणाम कीजिए प्रकृति को जो हमारी हर हाल में, हर तरह से, हर रूप में सेवा कर रही है।

जी हाँ, हर तरफ फूल खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कलियां और नए दिन का स्वागत कर रही हैं। वैसे भी सुबह की शांत हवा में एक खास ताजगी होती है। जब आप इस समय गहरी सांस लेते हैं तो मन का सारा तनाव, सारी चिंताएं मिट जाती हैं। जब हम अपने हम सफ़र के साथ चलते हैं तो ये सफ़र और भी सुहाना लगता है, जैसे इस वक्त हमें लग रहा है आपके साथ चलते हुए। और आप हमारे साथ चल रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

तो जनाब, हर भोर को प्रणाम कीजिए और मन से कहिए, जब भोर की पहली किरण आसमां को छूती है तो हर मुसाफिर के दिल में एक नई आस जगाती है। फिलहाल ये वक्त यहीं तक भोर सुहानी का। रूपा आपसे विदा लेती है, फिर किसी नए मोड़ पर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। नमस्कार।

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 నిలయంలో సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. ముందుగా హిందీలో తరువాయి ఇంగ్లీష్లో న్యూస్ హెడ్లైన్స్ వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए. श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया. बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी. नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है. श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है. गृहमंत्री ने कहा कि अगले 1 वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है. इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य

0: समर्थन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपेनिए के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Seva Tirth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that the speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The projects significant for strengthening connectivity, supporting industrial and economic activity and improving public services were reviewed with particular emphasis on adherence to timelines, inter-agency coordination, resolution of pending issues and expeditious completion. Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference, NSSC, in New Delhi, Mr. Shah said Prime Minister Narendra Modi has set the goal of a Viksit Bharat by 2047 and the primary prerequisite

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. Let me start the show with the facts of today. कभी कभी हम लाइफ में इक्वालिटी को इतना नॉर्मल समझ लेते हैं कि उसके इम्पोर्टेंस नोटिस ही नहीं करते. बट थिंक अबाउट इट, अगर अपॉर्चुनिटीज़ सेम हो तो कितना कुछ चेंज हो सकता है, राइट? अ गर्ल शुड हैव द फ्रीडम टू ड्रीम बिग, चूज हर करियर एंड मेक हर ओन डिसीजंस. और यही थॉट हमें लेकर आता है वुमेन्स इक्वालिटी डे की तरफ. This day reminds us that equality is not about giving women an advantage. It is about giving equal chance to everyone. Education ho, workplace ho, leadership ho, ya everyday life. Equal opportunities matter everywhere. Sirf women ko empower karna enough nahi hai. Society ko bhi apni thinking change karni hogi. Respect aur equal opportunities ghar se hi start hota hai. So today, let's celebrate the women who broke barriers and also support the girls who are still finding their voice. Because jab chances equal honge, तब ही टैलेंट अपना फुल पोटेंशियल दिखा पाएगा. एंड दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ वुमेन्स इक्वालिटी डे. एंड टू नो मोर अबाउट दिस, स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9. लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग.

0: FM Rainbow 101.9.
1: You're tuning into FM Rainbow 101.9. This is Ajay Sri Vaishnavi. As I was talking about Women Equality Day, equality is conversation sirf women ke around nahi honi chahiye. Men ka role bhi equally important hai, because real equality happens when men become partners, not just spectators. Ghar mein सब काम शेयर करना, डिसीजंस में इक्वल वॉइस देना और वुमेन के करियर गोल्स को सपोर्ट करना, दिस स्मॉल थिंग्स मैटर. अगर वाइफ या सिस्टर लीड हाउस वर्क कर रहा है तो घर का काम कौन करेगा, सिर्फ उनसे पूछना ज़रूरी नहीं है. मेन कैन सिंपली स्टेप इन एंड से आई टेक केयर ऑफ इट. और यही छोटी सी अंडरस्टैंडिंग एक बिग चेंज क्रिएट करती है. इक्वालिटी का मतलब कॉम्पिटिशन नहीं है, इट इज़ अबाउट शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. वेन सपोर्ट वुमेन, चिल्ड्रन ऑल्सो ग्रो अप सीइंग इक्वालिटी एज समथिंग नॉर्मल. तो बॉयज़ को भी बचपन से ये सिखाना ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, बिकॉज इक्वालिटी स्टार्ट्स एट होम एंड मेन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग दैट हैपन. सो स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो 101.9. अ ब्यूटिफुल सॉन्ग इज कमिंग.

101.9. Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi, and if you are just tuning to our station, I was talking about Women's Equality Day. हम अक्सर कहते हैं कि सोसाइटी की थिंकिंग चेंज होनी चाहिए, बट एक्चुअली चेंज का फर्स्ट क्लासरूम तो हमारा घर ही होता है. अ चाइल्ड लर्न्स व्हाट इक्वालिटी मीन्स बाय सिंपली वॉचिंग पेरेंट्स एवरी डे. अगर घर में बेटा और बेटी दोनों को सेम फ्रीडम, सेम एजुकेशन और सेम इंकरेजमेंट मिले, दैट बिकम्स देयर नॉर्मल. तुम लड़की हो, तुम ये नहीं करनी चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस कॉन्फिडेंस को स्लोली इफेक्ट कर सकते हैं. इंस्टेड लेट्स टेल आवर डॉटर्स यू कैन चूज योर पाथ. और सन्स को भी सिखाए कि रिस्पेक्ट, कुकिंग, क्लीनिंग और केयरिंग आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक जॉब्स. घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, नॉट जस्ट द वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इवन सिंपल थिंग्स लाइक गिविंग बोथ चिल्ड्रन इक्वल पॉकेट मनी और लिसनिंग टू बोथ देयर ओपिनियंस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. बिकॉज इक्वालिटी इज नॉट समथिंग वी टीच थ्रू बिग स्पीचेस, राइट? वो डेली एक्शन से, डेली कॉन्वर्जेशन से और फैमिली के एग्जाम्पल से डेवलप होती है. सो दिस वुमेन्स इक्वालिटी डे मे बी द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट इक्वालिटी इज राइट एट होम. स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9.

मैसेज उनका पूरा मूड चेंज कर दी. एंड दैट्स द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट स्मॉल जेस्चर्स एंड दे कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग बट कैन मीन एवरीथिंग. स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9.

केंद्रों के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा

0: आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरल में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

101.9. Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is Ajay Sri Vaishnavi. कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते लगता है यार एवरीवन इज डूइंग सो वेल, मैं ही पीछे हूँ. बट हियर इज समथिंग वी फॉरगेट. वी आर कंपेयरिंग आर एवरीडे लाइफ विद समवन एल्सेस बेस्ट मोमेंट्स. यू सी देयर न्यू जॉब, न्यू वेकेशन, न्यू कार, हैप्पी पिक्चर्स, बट यू डू नॉट सी द स्ट्रेस बिहाइंड दोज मोमेंट्स. देयर स्ट्रगल्स, फेलियर्स एंड बैड डेज आर मोस्टली ऑफ कैमरा. और अपनी लाइफ में हम अपनी हर प्रॉब्लम को क्लियरली देख रहे होते हैं. दैट्स वाई द कंपेरिजन नेवर फील्स फेयर. योर जर्नी हैज़ इट्स ओन टाइमिंग एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके. मे बी समवन इज़ अहेड ऑफ यू इन वन एरिया बट यू माइट बी अहेड इन अनदर. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई डोंट आई हैव देयर लाइफ, आस्क योर सेल्फ आम आई मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम वेयर आई वॉज. अपनी प्रोग्रेस को किसी और की टाइमलाइन से मेजर मत करो बिकॉज यू आर वॉचिंग देयर हाईलाइट रील वाइल लिविंग योर फुल स्टोरी. स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9.

101.9. Welcome back to FM Rainbow 101.9. Some people get their dream job at 23, some at 30, some even later. Some find love early, some take years to understand what they really want, and that's the beautiful thing about life. There is no fixed schedule. लेकिन हम खुद के लिए एक इमेजिनरी डेडलाइन बना लेते हैं. बाय दिस एज आई शुड हैव दिस, बाय दैट एज आई शुड हैव दैट. देन वी लुक एट समवन एल्सस लाइफ एंड फील लाइक वी आर लेट. बट लेट अकॉर्डिंग टू होम? योर लाइफ इज़ नॉट अ रेस वेयर एवरीवन हैज़ टू रीच द सेम डेस्टिनेशन एट द सेम टाइम. मे बी योर जर्नी इज़ टेकिंग अ डिफरेंट रूट बिकॉज यू आर बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन अलॉन्ग द वे. तो अपनी स्पीड को रिस्पेक्ट करो, अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करो. यू डू नॉट नीड टू बी अहेड ऑफ एवरीवन एंड यू जस्ट नीड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. You look at someone's picture and think, wow, they have such a perfect life. But a photograph can picture a smile, not the entire story. That person might also be dealing with things you'll never know about. Maybe they are worried about their career, relationships, money, or simply their own future. हम सब अपनी प्रॉब्लम्स को कैरी करते हैं, बस हर किसी का बैगेज अलग होता है. सो डू नॉट अज्यूम दैट समवन हैज इट ऑल फिगर्ड आउट जस्ट बिकॉज दे लुक हैप्पी, एंड डू नॉट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ बिकॉज योर लाइफ डज नॉट लुक पिक्चर परफेक्ट. रियल लाइफ हैज़ मिसी डेज, कन्फ्यूजिंग मोमेंट्स एंड फेलियर्स टू. इन फैक्ट दोज इम्परफेक्ट डेज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर स्टोरी. एंड तो जब नेक्स्ट टाइम comparison start ho, just remind yourself, I do not know the whole story, and that's enough reason to be kinder to yourself. Stay tuned to FM Rainbow 101.9.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरी दोस्त नंदिनी से। वक्त हुआ चला है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

0: द्रावड़ी जुबानें आर्याई जुबानें यूनानी लातिनी अंग्रेज़ी फ्रांसीसी फारसी अरबी ज़रा गौर करें तो महसूस हो गया होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इन ज़बानों पर इलाकाई छाप वाज़े होती चली जाएगी। मसलन अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी को ले लीजिए, इनके अल्फाज अपने ढब के एतबार से इंग्लिस्तान और फ्रांस को वाज़े करेंगे। वैसे अतालवी जर्मनी रूसी चीनी वगैरह बरसग़ीर में आए तो पश्तो पंजाबी अवधी तमिल तेलुगु कन्नड़ी मराठी वगैरह। ज़बान की उपज और अदायगी में इंसान दिमाग के किरदार पर नज़र डालेंगे, वाज़े रहे कि इंसानी दिमाग के गयाब में ज़बान का कोई वजूद ही ना होगा। इस मौजू पर गुफ्तगू से कबल अगर इंसान की दिमागी साख्त पर अजमाली नज़र डाली जाए तो मामले को समझने में आसानी रहेगी। ज़बान इजहार राय और अदाए मतलब का सबसे मौसर और बेहतरीन वसीला है, जिसके ज़रिए इंसान एक दूसरे से तबादले ख्यालात व मालूमात हासिल करता है और अपने जज्बात व एहसासात का इजहार करता है। आमतौर पर ज़ुबान माशरे के तकाज़ों और समाजी माहौल के अतबार से ज़ोर पज़ीर होती हैं और परवान चढ़ती हैं। ज़ुबान की तारीख़ के मुताले से अंदाज़ा होता है कि इन्हें ज़रूरियात और तकाज़ों के तहत ज़बान के अहद बाहद इरतखा के मदारिज तय किए हैं।
1: समय अभी आप समात कर रहे थे हरफे ताबंदा, वाकई बहुत ही उम्दा बातें जनाब एम ए है ने बताई है कि ज़ुबान जो है वो हमारे जो ख्यालात होते हैं जो एहसासात होते हैं वो एक पुल का ज़रिया होते हैं, तो हमें ज़ुबान से बखौब वाकिफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए बज़्म को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे मीलादुन्नबी के मौके पर एक खुसूसी जो तकरीर है। जी हाँ सामईन, आज कायनात की तारीख का सबसे खूबसूरत सबसे बाबरकत और सबसे अजीम दिन है। आज 12 रबीउल अव्वल है, यानी हमारे प्यारे नबी सरवरे कौनैन रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौमे विलादत बासादत। तमाम आलम इस्लाम को और तमाम सुनने वालों को जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबी उलव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जी हां समाइन, आज की ये बज़्म हम ये खसूसी नशरियात सिर्फ और सिर्फ आखाए नामदार के ज़िक्र खैर के लिए सजाए हैं। हुजूर की आमद से दुनिया में जहालत के अंधेरे ख़त्म हुए, इंसानियत को जीने का शऊर मिला और दिलों को ईमान का नूर नसीब हुआ। आज हम इसी खुसूसी मौके पर बात करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और अखलाक़ हुस्ना के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और अपने दिलों को इश्क़ रसूल से मुनव्वर कीजिए।

तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी विलादत की अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकर्रमा में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वालिद का इंतकाल हो गया था और बचपन में ही वालिदा और दादा का साया भी उठ गया। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पाकीज़गी, अमानत और दयानत का बेहतरीन नमूना रही है। आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन मशाल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से सादिक यानि कि सच बोलने वाला और अमीन यानि कि अमानतदार कहा जाता था। आपने अखलाक हुसना, भाईचारगी, सब्र व तहम्मुल और इंसानी हकूक़ का दर्ज दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इज़्ज़त दी, गरीबों की मदद की और तमाम इंसानों के दरमियान बराबरी का पैगाम आम किया। सामईन कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक कामिल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि यतीमों से कैसी मोहब्बत की जाती है, गरीबों का सहारा कैसे बना जाता है और दुश्मनों को भी कैसे माफ़ किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सिर्फ़

किसी खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी जो कायनात है, कायनात की हर हर चीज़ के लिए एक सरापाए रहमत रही है। आज के इस मुबारक दिन पर हमारा सबसे बड़ा तोहफा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये होना चाहिए कि हम उनकी सुन्नतों पर अमल करने का अहद करें। इस बाबरकत दिन मुसलमान अपने घर, मस्जिद और गलियों को सजाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, नाते रसूल पढ़ी जाती हैं और सीरत पर रोशनी डाली जाती है। इस दिन खुसूसी महफिल नात का भी एहतमाम होता है। कहीं दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए जाते हैं तो कहीं गरीबों में खाना तकसीम किया जाता है।

0: तो दोस्तों जश्न ईद ईद मिलादुन्नबी मनाने का असल मकसद सिर्फ खुशियाँ मनाना नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हमारी मोहब्बत अधूरी है। हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाएं और दुनिया में अमन और मोहब्बत का पैगाम फैलाएं।
1: हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
0: दोस्तों स्टूडियोज़ की घड़ी में 9:52 और 55 सेकेंड हो चुके हैं। बज़्म को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मतसहल हमें जानो सिलसिले के तहत तकरीर बउनवान बहादुर शाह जफर। तहरीर व पेशकश हैं प्रोफेसर सैयद अब्दुल मजीद बेदार की। समाप्त कीजिए।
2: बहादुर शाह जफर जैसे शायर के एक शेर की तफहीम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बहादुर शाह जफर का शेर मुलाहजा हो। सोहबते गुल है फकत बुलबुल से क्या बिगड़ी हुई, आजकल सारे चमन की है हवा बिगड़ी हुई, आजकल सारे चमन की है हवा बिगड़ी हुई। उर्दू शायरी में शाही और तबाही का नौहा बयान करने वाले शायर की हैसियत से बहादुर शाह जफर को मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली 1857 के गदर में हिंदुस्तानियों की हिमायत का मौका हासिल रहा। लेकिन इस बेबस और मजबूर शायर को तख्त से बेदखल करके अंग्रेजों ने कैद किया और रंगून भेज दिया। इसी कैद खाने में बहादुर शाह जफर की मौत वाकई हो गई।

1375 बताई जी जाती है। उनका तारीखी नाम अबू जफर था। लाल किले में तालीम और तरबियत भी शाह आलम सानी सोबत से फैज उठाया, क्योंकि वो उर्दू फारसी ब्रिज जबानों पर कुदरत रखते थे। अकबर शाह सानी का इंतकाल 1838 में हुआ तो बहादुर शाह जफर तख्त नशीन हुए। 26 फरवरी 1857 को मुल्क को आज़ाद कराने की तहरीक शुरू हुई। इसमें हिंदुस्तान की फौजों ने बहादुर शाह जफर को मुल्क का शहंशाह तस्लीम कर लिया, लेकिन तंजीम और वसाइल की कमी की वजह से अंग्रेज़ों ने 19 सितंबर 1857 को दिल्ली में कत्ल व गारतगिरी मचाई और बादशाह को किला छोड़ना पड़ा। बहादुर शाह जफर ने 2-3 रोज़ हिमायों के मकबरे में क़याम किया। बिल आखिर अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। 7 महीने बाद उन्हें रंगून रवाना कर दिया गया। 9 सितंबर 1858 को वो रंगून पहुँचे। माह नवंबर 1862 में बरोज जुमा रंगून में उनका इंतकाल हुआ और वहीं सुपुर्द खाक हुए। बहादुर शाह जफर से यादगार कुलियात और 2 नसरी किताबें मौजूद हैं, जो तालीखात अबू जफरी और शरह गुलिस्तान सादी 1811 और 1843 में मतबे सुल्तानी दिल्ली से शाये हुई। बहादुर शाह सभा के दौर में दिल्ली के बाशिंदे इंतशार और बेचैनी के अलावा अफसुरदगी का शिकार थे। यही वजह है कि बहादुर शाह जफर के कलाम में इसी दुख दर्द का असर नुमाया होता है। खुद उनकी ज़िंदगी हर लिहाज से मुसलसल अलमिये से कम नहीं थी। ताजपोशी के इंतज़ार में उनकी तवील उम्र गुजर गई। अधेड़ उम्र में बादशाह बने तो उनकी हुकूमत अज दिल्ली ता पालम रह गई। उनकी ज़िंदगी में सुकून फरागत और इत्मीनान का कोई मरहला नसीब नहीं हुआ। जहनी इस्तराब और जज्बाती ना आसूदगी के अलावा हुज़्नों में मलाल की कैफियत का साया उनके साथ ही रहा, जिसके नतीजे में बहादुर शाह जफर के कलाम में गमे ज़ात ही नहीं बल्कि गमे दौरान भी एक दूसरे के साथ हम आहंग होते नज़र आते हैं। अपने दौर की महरूमियों का एहसास और इनफरादी ज़िंदगी की तलखियों की कसक बहादुर शाह जफर के कलाम में महसूस की जा सकती है। यही वजह है कि उनकी शायरी में सियासी इंतशार और मुगलिया सल्तनत के टूटने बिखरने का अलमिया बिलाशुबा शेरी हकीकत के पस मंज़र में नुमाया होता है। वो अपने दौर के पुरआशोब हालात की मानवी फ़ज़ा को इस्तवार करने के लिए शेर गोई का सहारा नहीं लेते, बल्कि सितम रसीदा हालात और अंग्रेज़ हुक्मरानों की जुल्म व ज़्यादती को पेश करते हैं, क्योंकि वो बादशाह होते हुए भी बेबस और मजबूर होकर रह गए थे। यही वजह है कि बहादुर शाह जफर की गज़ल में दर्द व अलम की बेशुमार कैफियतें मुख्तलिफ़ अलामतों से ज़ाहिर होने लगती हैं। यह हकीकत है कि बहादुर शाह जफर का कलाम मौजूदा दौर की अलामत का नुमाइंदा नहीं, लेकिन जिस शेर को वजाहत के लिए यहाँ पेश किया गया है उससे खुद अंदाज़ा होता है कि जफर ने अपनी गज़लों के ज़रिए न सिर्फ अपने अहद की अलमिया खसूसियात को अपनी ज़ात का कर्ब करार दिया है, बल्कि वो हिंदुस्तान के मौजूदा अहद के नुमाइंदा ही नहीं बल्कि उनके शेर में मौजूद अलामतें ये साबित करती हैं कि उन्होंने गज़ल गोई के ज़रिए असर हाजिर की भी नुमाइंदगी की है। असर हाजिर भी उन्हीं मुमासिलात के साथ काम कर रहा है। बहादुर शाह जफर और उनके कलाम पर तबसरा करते हुए प्रोफेसर सैयदा जाफर ये लिखती हैं, जफर के कलाम का इसके सियासी और तारीखी सियाक व सबाक में मुताला करना चाहिए। उनकी शायरी में खफस, बुलबुल, गुल, बहार, चमन, सयाद और खिजा वगैरह गज़ल के इंतहाई कदीम इस्तियारे हैं, लेकिन यही अलामतें जफर के अशार में हद दर्जे वसी मानवी फ़ज़ा का अहाता कर लेती हैं। वो अपने पुराशोब अहद की वारदात को अपनी मानवियत में समो लेते हैं। जफर अपने दौर के इनकलाब और उसकी शोरिश से बराह रास्त मुतासिर हुए थे और इसी सियासी ज़िंदगी की
तब्दीलियों से उनका

तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट पर। ये मुहिम हर साल लोगों को ये समझाने के लिए चलाई जाती है कि मरने के बाद आंखें दान करना क्यों ज़रूरी है। इसका मकसद अंधेपन का शिकार लोगों को ज़िंदगी की दोबारा रोशनी लाना है। जी हाँ, जो आंखें अतिया करने का तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, वो ये है कि ज़िंदगी में लोग अहद करते हैं। कोई भी इंसान जो अपनी ज़िंदगी में ही ये अहद करे कि मरने के बाद उसकी आंखें अतिया की जाए, तो उसे चाहिए कि आई बैंक जाकर फॉर्म भरकर आंखें आई बैंक में अतिया करने का अहद कर सकता है। इसके अलावा ख़ानदान की इजाज़त भी ज़रूरी होती है। जी हाँ, मरने के बाद घर वालों की इजाज़त बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए अपने फैसले के बारे में घर वालों को पहले से बता कर रखना चाहिए। आंखें अतिया करने के लिए एक कॉल पर टीम की आमद होती है। जी हाँ, मौत के फौरन बाद

करीबी आई बैंक को फोन किया जाता है और उनकी डॉक्टरों की टीम खुद घर या अस्पताल आकर आंखें ले जाती है। अब सवाल ये होता है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। जी हाँ, लोगों का अक्सर ख्याल ये होता है कि पूरी आंख तब्दील हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग समझते हैं पूरी आंख निकाली जाती है फिर लगाई जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो आंख के सामने कॉर्निया का जो हिस्सा होता है यानी काली पुतली जैसा होता है, सिर्फ वही इस्तेमाल की जाती है। अगर ये पुतली किसी बीमारी या चोट की वजह से ख़राब हो जाए तो इंसान अंधा हो जाता है। अतिया की गई पुतली उसकी जगह लगा दी जाती है। एक इंसान की दो आंखों से दो अंधे लोगों को बिनाई मिल सकती है। समय बज में होगी और भी बातें, आइए सुनते हैं पंकज उदास की खूबसूरत आवाज में ये गजल।

0: हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवर और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रेंज नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है। तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
1: दोस्तों, स्टूडियोज की घड़ी में 10:28 हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं उर्दू का प्रोग्राम नैरंग, जिसमें गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत हम बात कर रहे हैं नेशनल आई डोनेशन पर। जी हाँ, साल 2026 की जो मुहिम है वो है भारत में इस साल 41वां कौमी अतिया चश्मे मनाया जा रहा है। हर साल हुकूमत और समाजी तंजीमें यानी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके लिए एक ख़ास या पैगाम का इंतखाब करती हैं ताकि नई थीम नस्ल को इस नेक काम से जोड़ सके। अतिया चश्म करने के बाद जो अमल होता है वो आई बैंक के ज़रिए हासिल करदा कॉर्निया जो होता है उसको आमतौर पर 7 से 14 दिनों के अंदर किसी ज़रूरतमंद मरीज़ को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट की कामयाबी की शरह दुनिया भर में दीगर तमाम आज़ा के ट्रांसप्लांट से ज़्यादा है। इस बेदारी फैलाने में हमारा और आपका किरदार बहुत अहम है क्योंकि हम सब इस मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे इस मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि हमें सोशल मीडिया पर इस 15 रोज़ा वक्फे के दौरान अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शऊर बेदार करने वाले पोस्टर्स शेयर कर सकते हैं। अपने ख़ानदान और अपने दोस्त व अहबाब के साथ मिलकर जीते जी आंखें अतिया करने का फॉर्म भरें ताकि मौत के बाद जो आपका ये अहदनामा है वो आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकें। आइए सुनते हैं अगला गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में है और ये लिया गया है फिल्म एतराज़ से।

0: हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे हैं। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे हैं, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
1: FM 101.9 MHz पर सामाईन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। स्टूडियोज की घड़ी में 10:43 हो चुके हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आई डोनेशन, जी हाँ, नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट के बारे में, तो इसमें आई बैंक का जो किरदार होता है वो ये होता है कि आई बैंक वाले आँखों को प्रिजर्वेटिव यानी निकालने के बाद एक ख़ास केमिकल में रखते हैं। इन आँखों को आमतौर पर 4 से 14 दिनों के अंदर किसी ज़रूरतमंद मरीज़ को लगाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा भारत में आँखें अतिया करने या मालूमात के लिए हुकूमत का कौमी टोल फ्री नंबर भी होता है, जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके तफसीलात मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अतिया चश्म से जुड़े कुछ वहम और उनकी हकीकत भी है कि आमतौर पर ये वहम होता है कि आंखें अतिया करने से अगले जन्म में इंसान अंधा पैदा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ महज एक अफवाह है। अगर हम हकीकत की बात करें तो इसका कोई सबूत नहीं है। अतिया चश्म सबसे बड़ा इंसानी अमल है। एक और वहम ये पाया जाता है कि आई बैंक वाले कॉर्निया के बदले पैसे लेते हैं। हकीकत ये है कि अतिया की गई आँखों की खरीद व फरोख्त कानूनन जुर्म है। मरीज से सिर्फ अस्पताल और सर्जरी के अखराजात लिए जाते हैं, कॉर्निया के नहीं। आइए सुनते हैं अगला गीत श्रेया घोषल की आवाज में, जिसके बोल हैं तेरे नैना मार ही डालेंगे।

सामाइन अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। आइए बज़्म के अख्तिताम से कबल सुनते हैं पयामे शब। तहरीर व पेशकश है जनाब नदीम अख्तर जैदी की।

0: समंदरों को भी है रत्वी के डूबते वक्त किसी को हमने मदद के लिए पुकारा नहीं। जिंदगी के समंदर में कभी ऐसे तूफान भी आते हैं जब इंसान अंदर से डूब रहा होता है मगर अपनी परेशानी किसी से बयान नहीं करता। इसे खौफ होता है कि कहीं लोग इसे कमजोर न समझें, उसके मसाइल का मजाक न बनाएं या उसके जख्मों को समझ न सके। मगर याद रखना चाहिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं इंसान होने की अलामत है। हर इंसान को कभी न कभी किसी के सहारे, मशवरे या सिर्फ दो हमदर्द अल्फाज की जरूरत पड़ती है। खुददारी अच्छी चीज है, लेकिन खुददारी को इतना बुलंद ना होने दें कि जरूरत के वक्त अपनों का हाथ भी कबूल ना कर सकें। इसी तरह दूसरों के खामोश दुख को भी नजरअंदाज न करें। मुमकिन है जो शख्स सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। जिंदगी का असल हौसला ये नहीं कि हम हर तूफान अकेले बर्दाश्त करें, बल्कि ये है कि जरूरत पड़ने पर सही इंसान का हाथ थामने और किसी डूबते हुए इंसान का हाथ थामने में झिझक महसूस न करें। याद रखिए, कभी मदद मांग लेना शिकस्त नहीं और किसी की मदद के लिए आगे बढ़ जाना एहसान नहीं, ये इंसानियत है।
1: समय इसी के साथ नैरंग की आज की ये बज्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है। तब तक अपना और अपने प्यारों का और उनका भी ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। कल इन्हीं मीटर्स पर 9:30 पर आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। जय हिंद।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी समाचार बारी बारी से नश्र किए जाएंगे।

0: नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नोवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नोवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851318077 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्चस्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्वेश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला जी। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: थैंक यू निखिल।

0: मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं स्टूडियो में। आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला जी। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
2: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स नियरली 200 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,250। Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. And global crude oil prices extend downward decline.
0: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स लगभग 200 अंक लुढ़का और निफ्टी 24,250 से नीचे बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा में भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित किया, कहा भारत का कायाकल्प ढांचागत है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से संभव हुआ और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी।
2: An important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 183 अंक यानी 0.24% गिरकर 77,473 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 127 अंक यानी 0.52% लुढ़क कर 24,208 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में मामूली बदलाव से 0.1% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप में 0.8% का उछाल देखा गया। इससे पहले बाजार की शुरुआत मिली जुली रही और शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त देखी गई, लेकिन जैसे जैसे सत्र आगे चला बिकवाली का दबाव बढ़ता गया, जिससे दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट में आ गए। सत्र के उत्तरार्ध में तेज गिरावट से सूचकांक में और भी नुकसान देखा गया।
2: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 183 points or 0.24% to close at 77,473. The Nifty lost 127 points or 0.52% to settle at 24,208. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index dipped 0.1%, while the Small-Cap 100 index rose 0.8%. Earlier, the markets opened on a mixed note and traded with modest gains. However, as the session progressed, selling pressure intensified, dragging both benchmark indices into negative territory. The decline gathered momentum during the latter part of the session, with the indices extending their losses and eventually closing to their respective days' low levels.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंफोसिस और भारतीय एयरटेल 1.9%, लार्सन एंड टूब्रो में 1.8% और पावर ग्रिड 1.5% नीचे आया। इसके उलट कोटक महिंद्रा बैंक में 3.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.9% और एक्सिस बैंक में 1.3% की तेजी दर्ज हुई।
2: In the sectoral indices on the BSE, 16 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, telecommunication lost 1.3%, IT fell 1% and focused IT lost 0.9%. In contrast, metal as well as commodities rose 1.4%, PSU bank increased 0.8% and financial services added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,330 companies advanced, shares of 1,990 companies declined, whereas shares of 220 companies remained unchanged.
0: ईद ए मिलाद के अवकाश के कारण आज भारतीय मुद्रा बाजार बंद रहा। पिछले सत्र में अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 95.41 रुपए पर बंद हुआ। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रकाश जी, इस पूरे महीने अगर अभी तक का सेंसेक्स और निफ्टी का कारोबार देखें तो हम देख सकते हैं कि गिरावट का रुख देखने को हमें मिल रहा है। क्या कारण रहे जो इसे महज मुनाफा वसूली माना जाए या FIS या DIS ने हाथ खींच लिया, या फिर ये कह सकते हैं कि ज्यादा गिर सकता था लेकिन DIS ने कई मौकों पर हाथ लगाया है, संभाला है मार्केट को?
1: चलो बात करते हैं आज से शुरुआत करते हैं।
0: जी,
1: आज के जो हेडलाइन नंबर्स हैं, जो इंडाइसिस हैं, नीचे गिरे हुए हैं।
0: जी,
1: लेकिन आपने अपने दोनों ने रीड आउट्स में पढ़ा कि जो ब्रॉडर मार्केट है उन दोनों में फॉर इंस्टेंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगर हम डेटा

0: देखें तो उसमें 1966 शेयर्स एडवांस हुए
1: जी
0: और उसके मुकाबले में 1548 शेयर्स डिक्लाइन हुए।
1: जी
0: तो क्या क्या एक माहौल है। और जब जबकि आपका NSE जो इंडेक्स है, NSE निफ्टी 50, वो डाउन हुआ है 127 पॉइंट से,
1: जी
0: और ब्रॉडर मार्केट आपको ग्रीन दिखा रही है।
1: जी
0: तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ है, बड़ा रुचि वाला फेज़ है। और जो बड़े शेयर्स हैं, जो लार्ज कैप शेयर्स हैं, जो निफ्टी 50 में आते हैं या सेंसेक्स में आते हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई होगी। लेकिन जो स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, कुछ सेक्टोरल हैं,
1: जी
0: उनमें ये जाहिर हो रही है आज की बात। कि अब बात करते हैं जो आपने पिछले कुछ दिनों या महीनों की बात करी, ये बात बिल्कुल सच है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने यहाँ से बिकवाली कर रहे थे, लेकिन बिकवाली थोड़ी थमी है अभी, हल्का फुल्का ग्रीन ग्रीन कभी दिखता है उनका। और ये बात सच है, उसके कई ग्लोबल रीजंस हैं। हमारी वैल्यूएशन भी उनको महंगी लगती है, और कुछ AI का प्ले जिसको बोलते हैं, कि
1: जी
0: हमारे जो IT स्टॉक्स हैं, AI इस टाइम उसमें चलन में है,
1: जी
0: पूरे संसार में AI में चलन है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो
1: जी
0: है इन्वेस्टमेंट उसमें जा रहा है, और उसकी जो AI की वैल्यू चेन है, जिसमें जिनको एक बोलते हैं हाइपर स्केलर्स,
1: जी
0: जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट कमिट किए हुए हैं,
1: जी
0: फिर उन उसी वैल्यू चेन में आते हैं चिप मेकर्स, फिर उसी वैल्यू चेन में आगे प्राइवेट इक्विटी। तो ये सारा AI का जो प्ले है, उस प्ले को कहीं ना कहीं हमारे इंडियन IT सिस्टम के अपोजिट में रखा जा रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसा इंप्रेशन किया जा रहा है हमारा इंडियन IT सिस्टम उसका एज इफ पार्ट नहीं है।
1: जी
0: तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन अब क्या है कि कंसर्न्स आ रही हैं AI के इन्वेस्टमेंट को लेके, वहाँ का जो शेयर होल्डर्स है बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो भी उनको क्वेश्चन, उनके दिमाग में एक तरह का डाउट आ रहा है कि जो इतना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी उसमें कमिट कर रही हैं, उसका रिटर्न हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक
1: जी
0: तरह का भय का वो माहौल बना हुआ है।
1: ओके
0: लेकिन ऐसा भी नहीं है कि AI कोई ख़त्म हो जाए, AI इज़ हेयर टू स्टे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक सा फेज़ है, वी हैव टू लिव विद इट।
1: आपने वैल्यूएशन की बात की, तो क्या भारतीय बाजार के लिए चिंता का विषय है?
0: चिंता की बात नहीं है, एक चीज़ महंगी सस्ती की बात होती है। मान लीजिए हमारा एक मोमेंटम है, हमारे शेयर्स अभी भी, हमारे शेयर्स कई ऐसे हैं जो 100 PE पे मिल रहे हैं।
1: जी
0: अब कोई आदमी 100 PE पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे इन्वेस्ट करेगा, तो एक तो होता भाव में, जब आप चलते हैं मोमेंटम इतना बढ़ जाता है, तो उसमें भाव में जब आप फंस जाते हैं,
1: भावनाओं में बहना
0: हाँ, तो ये अच्छा नहीं होता। तो
1: जी
0: वो अपना एक उनका एक प्रूडेंशियल सिस्टम है, तो उसमें नहीं बैठते तो नहीं बैठते, इसमें क्या प्रॉब्लम है।
2: प्रकाश जी, वी हैव सीन दैट द मार्केट्स हैव बीन रिएक्टिंग अ लॉट टू द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, स्पेशली टू द यू नो द मूवमेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस। नाउ डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव ईज्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वी स्टिल सी दैट द मार्केट्स डिड नॉट रिएक्ट टू दैट। मार्केट्स, यू नो, नॉर्मली व्हेन दैट हैपन्स, मार्केट्स रिएक्ट लिटिल पॉजिटिवली टू द स्लाइडिंग, यू नो, टू द डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, बट दैट्स नॉट हैपन्ड राइट नाउ। डू यू थिंक दैट्स ऑल्सो बिकॉज टू डू विद द फैक्ट दैट इन्वेस्टर्स एंड मार्केट्स ओवरऑल आर स्टिल अ लिटिल वैरी ऑफ द सिचुएशन बिटवीन US एंड ईरान, और द कंटिन्यूइंग स्टेलमेंट बिटवीन द टू साइड्स, एंड देयर फोर the decline in or the slide in international crude oil prices is not really reflecting in a positive movement in the markets?
0: Well, definitely, there's a the situation in the Middle East continues to remain volatile, and you talked about the crude oil prices. Crude oil prices also continue to remain volatile. It's only today that you see a slight dip in the crude oil price, in the benchmark below 90, and then immediately you see the result in the market, especially our market. Whenever you have this situation where crude oil prices soften, rupee improves against dollar for logical reasons, right? So the situation in the Middle East continues to remain highly unpredictable, volatile, and then leading to other geopolitical and geo-economic. You have this tariff wall war, and the tariff wall. Somebody wants to.

0: protected tariff wall, the other wants to break it.
1: Yes.
0: So you have this situation which is not very conducive for the investment climate, so to speak.
1: Yeah. So if you look at these sectoral indices on the BSE today, we see that IT fell 1% and focused IT lost 0.9%. Again, I'll come back to geopolitical situation. We have the US for now has paused, you know, put a pause on the release or rather, you know, release of the visa. They have the US has now paused the visas across all sections. And for Indian markets or for India, you know, all those IT sector is a big earner. So do you think that the slide that we're seeing in the IT sector today, if we talk about the sectoral indices, is to do with the fact that the US has right now put a pause on visa appointments?
0: Isle, when it comes to IT, IT sector anyways had remained under pressure.
1: Okay. Yeah.
0: For various reasons, yes. Right? And several of the IT stocks are available even today at a very attractive price to earning ratio. Sometime you might say mouth watering kind of evaluation. But when it comes to today's movement of IT stocks, I think it's a definitely, I'll agree with you, it's a knee jerk reaction.
1: Yes.
0: To this very stringent kind of measures being initiated by the US, because after all, our entire IT paradigm is based on H-1B visas,
1: yes.
0: And you know, movement of people, movement of, so naturally it's a knee-jerk reaction. It remains to be seen how it plays out. Hopefully things should clear out.
1: Right.
0: In a few days.
1: Right.
2: प्रकाश जी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर जो है, आपको क्या लगता है कि ये मार्केट को मजबूती दे रहे हैं ऐसे समय में जब तमाम बैंकिंग की जो प्रणालियां हैं उन पर भरोसा करें या ना करें, ये भी बात आ जाती है. और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो हम अगर देखते हैं पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि हमारा जो गवर्नमेंट ने जितना बैंकिंग में एस्टेब्लिशमेंट किया है वो सपोर्ट कर रहा है?
0: देखिए, हमारा जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है बहुत अच्छी सिचुएशन में है, उनकी बैलेंस शीट बड़ी अच्छी है. और जहाँ तक ये सवाल है कि डे टू डे मूवमेंट का, हमारी जो इंडियन बैंकिंग है पूरा, नॉट ओनली बैंकिंग द एंटायर फाइनेंशियल
2: इंस्टीट्यूशन
0: सिस्टम, NBFCs कंपनीज जो हैं, कुछ अच्छी कंपनीज हैं, तो ये कंपनीज बड़ा अच्छा कर रही हैं. और जहाँ तक डे टू डे मूवमेंट का सवाल है, जैसे अनुभा जी ने जिक्र किया कि क्रूड ऑयल का, जैसे ही क्रूड ऑयल में मूवमेंट आती है इवन बैंकिंग, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर,
2: राइट,
0: तो जैसे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स की बात होती है तो बैंकिंग में उसका असर पड़ता है. तो ये है, बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर हमारा बड़ी अच्छी हेल्थ में है. हमारा जो NPA सिचुएशन है, जो नॉन परफॉर्मिंग, बड़ी वेल विद इन कंट्रोल है. और अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, मझोले बैंक्स हों, छोटे बैंक्स हों, कोई दिक्कत नहीं है. वही एक सेक्टर है विच इज़ वेरी गुड.
2: आपने क्रूड ऑयल का जिक्र किया, एक सवाल मेरे जहन में आ गया, मिडिल ईस्ट में जो भी सिचुएशन अभी बन रही है, ऐसे में ये जो चीज़ें हैं ये कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं?
0: ये चीज़ें माने,
2: मतलब कहने का कि हमारी जो जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं क्रूड ऑयल से लेकर के, क्रूड ऑयल की
0: हमारी इकोनॉमी के लिए कितना,
2: जी हाँ, क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में सिचुएशन कुछ और है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो भी चीजें हम देख रहे हैं,
0: हाँ,
2: इनको अगर आप थोड़ा सा मिक्स करें तो.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, क्रूड ऑयल के दाम थोड़े सॉफ्टन हुए हैं, अभी भी 90 के आसपास हैं. हमारे लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है. हम चाहेंगे ये 80 के नीचे आए, 80 के नीचे आए, 75 पे आए, तो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे को, हमारी एनर्जी बहुत डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है ना. तो ये जो निखिल जी जो है ना, हमारी जो आपको गैप नज़र आता है, $90 हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है. जो क्रूड का रेट है $90 पर बैरल is not a comfortable situation for. We would like it to come down. That's why we would like a normalcy in the Hormuz.
1: Yes.
0: And bada zaruri hai hona hamare liye.
1: We do have a story later on in the program that we will talk about what is happening across the Strait of Hormuz. But before that, let's move on to the next story. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption and rapid

0: is it is taking place coincidentally or along with Mr. Piyush Goyal's visit to Japan.
1: Japan, yes.
0: And our very important strategic engagement with China and Russia.
1: Yes.
0: Imagine, see the kind of strategic movement that we are making. Mm. Because of the geopolitical and the geoeconomic unraveling, right. Whatever is happening, we got to be cognizant of that.
1: Yes.
0: So, countries after countries, including Europe and China, are realizing that they need to look beyond the US.
1: Yes.
0: Because, you know, after all, at the end of the day, trade should be a win-win two-way situation. It cannot be one party dominating the other. Even if you are dealing with a small neighboring country, you got to respect a win-win kind of a situation. And if it's not happening in a particular way, then the countries need to look beyond one dominant partner. That's what is you see around.
1: Right.
2: भारत और मोरक्को ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने और निवेश तथा औद्योगिक सहयोग को विस्तार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दोनों देशों की साझेदारी को पहले से अधिक सुदृढ़ करते हुए गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की सातवीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसकी सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद तथा मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार के प्रमुख उमर हजरा ने की। एशियाई बाजारों की बात करें तो एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया कोस्पी आज 1% की बढ़त और जापान का निक्केई 225 0.6% ऊपर आकर बंद हुआ।
1: लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्टोरी। कनाडा हैज इंपोज्ड काउंटर टैरिफ्स ऑफ अप टू 50% ऑन यूएस गुड्स वर्थ $27.6 billion आफ्टर सस्पेंडिंग ट्रेड नेगोशिएशंस विद वॉशिंगटन। द काउंटर टैरिफ्स विल टेक इफेक्ट ऑन September 8th एंड कवर स्टील, डेयरी प्रोडक्ट्स, अप्लायंसेस, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, पल्प एंड पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर गुड्स। द कनेडियन टैरिफ्स विल बी सेट एट 15%, 25%, and 50%, मैचिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग यूएस रेट फॉर ईच प्रोडक्ट टारगेटेड अंडर अमेरिकन सेक्शन 338 एंड सेक्शन 232 टैरिफ्स। Ottawa has also unveiled a $7.5 billion support package for workers and businesses affected by the escalating trade dispute. A very quick comment from you, Prakashji, on this. Although this is, like we were discussing earlier, the trade war is essentially between the US and Canada. And Canada is the biggest trading partner. Biggest trading partner is the US. But do you see this trade war affecting the rest of the economies and spilling over some spillover effect?
0: Well, it sends signals the way Canada is handling the situation. And it also, then you have also with the kind of next month, Xi and Trump are going to meet again. So it sends signals as to what kind of economic scenario is unfolding before us. And then accordingly, countries after countries need to put up their strategies together.
1: Right.
2: ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कल तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्शी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने होर्मुज जल डमरों मध्य से गुजरने वाले जहाजों के यातायात के प्रबंधन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण पर चर्चा की। ईरान अमेरिका संघर्ष शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद भी ये जलमार्ग बाधित है। एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा कि प्रस्तावित ढांचे में एक संयुक्त अस्थायी नौवहन गलियारे का प्रावधान और जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए संयुक्त प्रयास भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक स्थायी जहाजरानी गलियारे की शुरुआत और होर्मुज के प्रशासनिक भविष्य के लिए किसी समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से तकनीकी मुद्दों के साथ वार्ता जारी रखेंगे। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबावादी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि दोनों देश एक अस्थायी मार्ग पर सहमत हो गए हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान और ओमान अगले 30 से 60 दिन तक एक नए स्थायी और टिकाऊ जलमार्ग पर सहमति बनाने के लिए बातचीत करेंगे। होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा शुरू करने के अमेरिका के प्रयासों के ओमान के हस्तक्षेप की स्थिति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह ओमान पर बम गिराने की धमकी देने के बाद यह बैठक हुई है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रकाश जी?
0: जैसे मैंने अनुभा जी से जिक्र किया, सिचुएशन अभी को क्लियर नहीं है मिडल ईस्ट में, और क्लियर नहीं है तो ये एंग्जाइटी का कारण तो है ही सही। तेल आज 90 के आसपास थोड़ा सॉफ्ट हुआ, कल कैसे होगा किसी को मालूम नहीं। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये डील हो जाए। ओमान, ईरान और अमेरिका देख रहा है इसको आपस में, ताकि हमारा जो पूरे पूरे विश्व को इससे फ़ायदा है और थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ट्रेड

0: वर्ल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बढ़ाना कुछ ख़राब सा हो रखा है पिछले कई महीनों से, जब से
1: ऑलमोस्ट 6 महीने
0: 6 महीने हो गए
2: जी।
0: तो इसलिए लेट्स होप कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए और ये सब के लिए अच्छा है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, अमेरिकन इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में आ रही है, ये मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा है, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री सफ़र कर रहे हैं, हमारे भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और तेल का भाव जब बढ़ता है तो जाहिर है दिक्कत होती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें से निकले
1: जी।
2: Prakash, you are saying that, of course, everybody expects some kind of a positive, you know, outcome from this meeting. But again, as we were discussing, it's still a very fluid situation. What is happening in West Asia for everyone. But do you think that's kind of this fact that Iran and Oman have decided to have some kind of a phased approach and, you know, discussions on the opening of Strait of Hormuz? It's you know, I would say a silver lining. Would you call it that?
0: Well, I would tend to agree with you to some extent because it's not, see, Iran and Oman cannot do anything independent of the U.S.
2: Okay.
0: U.S., there's a huge pressure on the U.S. administration or the U.S. government, Trump government, because of the midterm elections there. Uh-huh. People are suffering.
2: Yes.
0: Because of inflation. Interest rates are really shooting through the roof. The bond yields, which represent the cost of borrowing, is crossing 2 decades high.
2: Yes.
0: So those economic pressures, I hope, would force the countries in the conflict to see sense so that an amicable solution is hammered out of the Hormuz.
2: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices fell to a 2-week low as renewed talks between Iran and Oman raised hopes that the Strait of Hormuz could be reopened. Brent crude was trading 2.7% down at $86.20 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% lower at $80.18 per barrel when reports last came in.
1: सराफा बाजार में सोना 0.4% गिरकर 161,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 0.5% बढ़कर 242,959 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। प्रकाश जी, एक रुख हम देख रहे हैं, कभी गोल्ड का दाम बढ़ता है तो सिल्वर का नीचे आता है, सिल्वर अगर नीचे आता है तो गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड अगर नीचे सिल्वर ऊपर जाता है, ये ट्रेंड देख रहे हो। साथ में एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, आने वाली जो आरबीआई की मौद्रिक नीति की जो भी बैठक होगी उसमें क्या आरबीआई के लिए चिंता का विषय हो सकता है तमाम चीजें वैश्विक घटनाक्रमों को, और जो देख रहे हैं कि कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ जिनमें शुगर वगैरह भी शामिल है।
0: आरबीआई की मीटिंग तो अभी दूर है
1: जी,
0: लेकिन गोल्ड का जो ट्रेंड है पिछले 15 दिन में 10 दिन में बड़ा पॉजिटिव है
1: जी,
0: और पूरे वर्ल्ड में दोबारा से गोल्ड की तरफ रुझान हो गया है। और जहाँ तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है, एनर्जी यूसेज उसका काफ़ी रहता है, तो गोल्ड का जो है पॉजिटिव है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें अभी और काफ़ी रन बाकी है और भी थोड़ा सा मजबूती आ सकती है, तो ये तो हुआ गोल्ड का। और जहाँ तक आरबीआई का सवाल है, आरबीआई हर चीज़ का जायज़ा लेता है क्योंकि जो वैश्विक कारण है वो तो बड़े इम्पोर्टेंट हो चले हैं ना, हम जो आजकल चल रहा है उसको तो इग्नोर करके आप चल ही नहीं सकते ना, ये दिक्कत है।
1: तो प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices declines, Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,250. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. And global crude oil prices extend downward slide. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Till then, from the entire team, goodbye. Namaskar.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूँ आपके साथ माधुरी, और ये सफर होने वाला है गीत मेरे मन मीत का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं सदाबहार गीत अपनी हिंदी फिल्म से, और खूबसूरत गीतों का खजाना आप सुनिएगा बिना रुके।
1: बात नहीं

और इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यही समाप्त होता है। विदा दीजिए माधुरी को, अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-8999-0012 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं का आभार जताते हुए श्री बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि एकजुटता की यह भावना दोनों देशों के बीच गहरे मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती है, जिसे हम बेहद महत्व देते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन्द्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तैयार है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर मदद मुहैया करा रही हैं।

0: तिब्बत से आरंभ हुई भीषण बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। इससे पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लापता हैं। भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने भीषण बाढ़ में अपने प्रियजनों को खोने वाले और सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत ने C-130J विमान से आपातकालीन सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां भेजी हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि CPC केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विदेश प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Rakel. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River yesterday from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Mr. Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, the Prime Minister said, India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977-985-131-6807, +977-970-910-7500 and +977-981-032-6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in six districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा का ये सफर लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। और आज बात करेंगे उन संभाले हुए सामानों की जिन्हें हमने पूछ के किसी किनारे कर दिया है। पुराना सामान संभल कर रखा है मैंने, पुराना सामान संभाल कर रखा है मैंने, आज भी उसमें कुछ हिस्से मेरे बचपन के भी।

पुराना सामान संभल कर रखा है मैंने, पुराना सामान संभाल कर रखा है मैंने, आज भी उसमें कुछ हिस्से मेरे बचपन के भी शामिल हैं, उसमें कुछ यादें मेरी जवानी की शामिल हैं, उसमें कुछ खिलौने मेरे बचपन के दोस्तों के हैं, उसमें कुछ यादें मेरे पुराने रिश्तों के हैं। तो हम सभी जो हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा सामान ज़रूर अपने घर में संभाल के रखते हैं जो वक्त के साथ पुराना तो हो जाता है, कभी कभी बिना इस्तेमाल का भी हो जाता है, लेकिन हम उन्हें चाह कर भी उठा के फेंक नहीं पाते हैं। ऐसी ही चर्चा आज की रात निशिगंधा के बहाने करेंगे हमारा।

हमारे घरों में अक्सर कुछ ऐसी जगह होती हैं जैसे कि बेसमेंट हो गया, स्टोर रूम हो गया, फिर अलमारी का वो ऊपर वाला हिस्सा, या फिर पलंग के नीचे वाला बॉक्स जहां सालों से कुछ सामान चुपचाप पड़ा रहता है। धूल के पर्दों से ढके ये सामान सिर्फ कबाड़ नहीं होते, बल्कि हमारे बीते हुए कल के जीवंत गवाह होते हैं। अच्छा, उनमें से कोई भी चीज़ हमारा फेंकने को मन नहीं करता। जब भी हम उसमें से कुछ निकालने जाते हैं, लगता है अच्छा ये तो उस दिन की याद से जुड़ी थी, और ये खिलौना जिसे मैं बहुत प्यार करता था, ज़रूर आज इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, फिर भी हम ये सोच के रख देते हैं कि शायद कल कोई इससे खेले। धूल जमी है जिन किताबों और खिलौनों पर, उन पर हमारे कभी गहरे निशान हुआ करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी हमारी कहानियाँ इन पुराने सामानों पर मिल जाया करती हैं।

शहनाई फिल्म से गीत सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में, और हम निशिगंधा के बहाने कर रहे हैं बात पुराने सामानों की। इन पुराने सामानों में कई तरह की चीज़ें होती हैं। इनमें हमारे बचपन के वो टूटे खिलौने भी होते हैं, स्कूल की पुरानी कॉपियां देखते हैं और देखते कि अरे तब हमारी हैंडराइटिंग ऐसी थी और आज कैसी हो गई है। फिर फटे पुराने स्कूल के बैग भी होते हैं और उनमें कोई पुराना पर्चा भी निकल आता है। जंग लगी साइकिल जिसे लगता है शायद अब भी हम चलाएंगे। शादी ब्याह के पुराने कार्ड देखते हैं तो लगता है फलां की शादी तब हुई थी, देखो ना उसकी शादी तो उस तारीख को और उस साल में हुई थी। कोई दादाजी की पुरानी घड़ी या फिर दादी की पीतल की कढ़ाई, जैसी कोई भी चीज़ हो सकती है। मेरे घर में कुछ इस तरह की चीज़ें, आपके घर में भी ऐसी ही जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी। कई बार ये भी लगता है कि इन्हें फेंक दें या फिर कबाड़ वाले को बेच दें, लेकिन एक अजीब सा लगाव हमें ऐसा करने से रोक देता है। ये लगाव उस वस्तु से ज़्यादा उससे जुड़ी जो भावनाएं हैं और जो यादें हैं उससे होता है, और फिर लगता है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी फिर उसी मोड़ पर आ गई है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह सफर है निशिगंधा का, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ माधुरी।

फिल्म आंख मिचौली से आशा जी की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप। और आज निशिगंधा के बहाने हम बात कर रहे हैं उन सामानों की जिसे यूं तो हमने पीछे रख छोड़ा है, लेकिन जब भी कभी उनसे धूल हटाते हैं हम भी खुद ब खुद पीछे चले जाते हैं। जब कभी घर की सफाई के दौरान ये चीजें अचानक हमारे सामने आ जाती हैं तो मानो समय का पहिया पीछे घूम जाता है। किसी पुरानी डायरी के पन्ने पलटते ही हमें वो अपना बीता हुआ दौर याद आ जाता है, जब हमारी जो प्राथमिकताएं थीं और जो खुशियां बेहद छोटी और मासूम हुआ करती थीं आज कैसी अलग सी हो गई हैं। धूल खा रही वो पुरानी साइकिल हमें बचपन के उन्हीं रास्तों पर ले जाती है जहां हम बेफिक्र होकर घूमा करते थे, और लगता है समय बड़ी तेजी से बीत रहा है। काश कि हम फिर से समय के पहिए को पीछे ले जाते और वहीं फिर से साइकिल चलाते और कह पाते कि ऐ समय तू धीरे

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म कर्म से। विज्ञान की नज़र से अगर हम इन पुराने सामानों को देखें तो भले ही ये क्लटर लगे, यानी घर में बिखराव या फालतू सा सामान लग सकता है, लेकिन अगर मानसिक और अपने भावनात्मक रूप से हम इन्हें देखें तो ये हमारी पहचान का एक हिस्सा होते हैं। ये चीज़ें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ पहुँच गए। तो जब भी हम इन सामानों को देखते हैं तो बहुत कुछ मन में आ जाता है। इस वक्त मेरे भी मन में आ रहा है और मुझे लगता है आप भी पुराने सामानों के बीच ज़रूर कहीं खो गए होंगे और पुरानी यादों के साथ कई जुड़ी कहानियों को सोच रहे होंगे।

फिल्म नगीना का ये गीत सुना आपने अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और फिर लौटते हैं उसी पुराने सामान की तरफ जिसे कहीं हमने सहेज कर रख दिया है, और फिर जब भी देखते हैं वो पुराना वक्त याद आने लगता है। लेकिन आज का जो दौर है, यूज़ एंड थ्रो वाला जो दौर है, जहाँ चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती हैं, पता है ये पुराना सामान ना एक ठहराव का एहसास कराता है। हालांकि इन्हें सहेजने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने घर को कबाड़खाना बना लें। समझदारी तो इसी में है कि हम इन यादों को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से रखें, पुरानी चीज़ों को साफ करके उन्हें फिर से या फिर रिसाइकल करके या सजावट के रूप में इस्तेमाल करके हम उन्हें अपने वर्तमान का हिस्सा भी बना सकते हैं। चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखेंगे तो पुरानी चीज़ें भी हमारे आज से मैच करके रखी जा सकती हैं। और कई बार ऐसा सामान होता है हमारे पास जो हमारे किसी यूज़ का नहीं होता, तो उन्हें ज़रूरतमंदों को भी दिया जा सकता है, जो हमारे लिए पुराना हो गया हो लेकिन किसी के लिए वो काम का हो। तो समय से ऐसी चीज़ों को किसी को देने में भी भलाई होती है। और उन पुराने ख़तों का क्या करें जो कहीं हमने लिख छोड़े हैं और जब भी वक्त मिलता है उन्हें पलटते हैं, तो उन्हें पढ़ें और पढ़ के एक नए एहसास की ऊर्जा से भर जाएं। ये भी हो सकता है कि आपका ऐसा ही कुछ सामान किसी और के पास हो।

इजाज़त फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप आशा जी की आवाज़ में। और बात हो रही है पुराने सामानों की, तो संक्षेप में कह दें तो सालों से पड़े ये पुराने सामान घर के निर्जीव हिस्से नहीं हैं, बल्कि हमारी सुनहरी यादों की तिजोरी है जो वक्त वक्त पर हमें मुस्कुराने की वजह दी जाती है और हमारे सामने यादों की एक बारात गुजर जाती है इसी तरह।

इसी के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। इससे पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ से आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 00861851428490 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 00861398990002 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977 985 1

3168607 और 9779701075000 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेन्द्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन्द्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर मदद मुहैया करा रही हैं। भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-30J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। नेपाल के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिस्लेन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले को बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपये जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत ने नेपाल सरकार को तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। नेपाल के वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि चीन ने भी नेपाल को तुरंत आर्थिक मदद देने का वादा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मिजोरम में 6 सड़कों के निर्माण के लिए 256.70 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने की घोषणा की है। श्री गडकरी ने बताया कि इन सड़कों की कुल लंबाई 82.89 किलोमीटर होगी और इनका निर्माण केंद्रीय सड़क अवसंरचना योजना के अंतर्गत किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग में हुए विकास और इस क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की समुद्र में उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त परमाणु प्रौद्योगिकी पहल के शुभारंभ से पहले परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने वॉशिंगटन में अमरीकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप, और ये सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स। आज की रात साथ हूँ मैं आपके, माधुरी। तो चलिए शुरू करते हैं सुनहरे गीतों का दौर।

ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ में फिल्म मेरे महबूब से, जिसका संगीत दिया नौशाद साहब ने। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म 20 साल बाद से, लता जी की आवाज़ में।

जंगली फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ों में, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी ने लिखे बोल। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त समय हो रहा है 1:29:46। आप जुड़े हुए हैं गीत सुहाने के इस सुनहरे सफर के साथ।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म बहारों के सपने से, लता जी की आवाज़ और आर डी बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म हमरात से, महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में।

गाइड फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ में, एस डी बर्मन का संगीत और शैलेंद्र के लिखे बोलों के साथ। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने का ये सुनहरा सफ़र। रात्रि के 1:46 और हो गए हैं पूरे 35 सेकेंड। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म तीसरी मंजिल से आशा और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में।

ये बहुत ही प्यारा सा गीत जिसे लगता है कई बार सुनते रहें और बस सुनते रहें। ये गीत था फिल्म लव इन टोक्यो से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, संगीत शंकर जयकिशन का। और अब कार्यक्रम कह रहा है कि मैं इस सफ़र का आखिरी गीत जो है वो पेश करूं, तो वो गीत है फिल्म पड़ोसन से लता मंगेशकर और आशा जी की आवाज़ों में।

और इसी के साथ सुनहरे गीतों की ये पेशकश यहीं समाप्त होती है। इजाजत दीजिए माधुरी को, अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक बाढ़ आई से फंसे भारतीयों नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-8999-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर

0: सहायता उपलब्ध करा रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश की और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ से प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। नेपाल के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिसलेन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले को बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत ने नेपाल सरकार को तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बने रहने में भारत के लिए कौशल के साथ साथ बौद्धिक क्षमता निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने नई दिल्ली में क्षमता निर्माण पर आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से बदलते तकनीकी और वैश्विक परिवेश का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए क्षमता निर्माण को व्यक्तिगत कौशल आधारित दृष्टिकोण से विकसित होकर एक सामूहिक और समग्र समाज के प्रयास में तब्दील होना चाहिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज चरणबद्ध और लक्षित तरीके से जारी करना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय ने 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 3 लाख मीट्रिक टन रहने की बात कही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River yesterday from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepalese citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Mr. Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, the Prime Minister said India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Prime Minister of Nepal Balendra Shah thanked Prime Minister Narendra Modi for his warm words of solidarity and offering all possible humanitarian assistance to the flood-hit country for the rescue and relief operations. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people require

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और रात सुरमई लेकर मैं माधुरी हूं आप सभी के साथ। तो रात सुरमई में जहां हम सुर के अलग अलग रंग, भावों के अलग अलग रंग को समेट कर लेकर आते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रंग से जिसका नाम है खुशी।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से लता जी की, माफ़ कीजिएगा ये गीत आपने सुना फिल्म अभिमान से लता जी की आवाज़ में। और अगला गीत हम आप तक पहुँचाएँ उससे पहले ये दो लाइनें आप तक पहुँचाना चाहूँगी कि अब तो खुशी का गम है न गम की खुशी, मुझे बेहिस बना चुकी है बहुत ज़िंदगी मुझे।

ये प्यारा सा गीत आपने सुना मुकेश साहब की आवाज़ में, धरती कहे पुकार से फिल्म से। और अगला गीत कुछ शिकायत लिए है, कहने देती नहीं कुछ मुंह से मोहब्बत मेरी, लब पे रह जाती है आ आ के शिकायत मेरी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 2:29 और हो चुके हैं पूरे 17 सेकेंड और ये सफर है रात सुरमई का। खुशी के गीत सुन चुके हैं और शिकायत की बारी है अब, और शिकायत में तो बहुत से शिकायतें शामिल हो जाती हैं। मोहब्बत में ही मिलते हैं शिकायत के मज़े पे हम, मोहब्बत जितनी बढ़ती है शिकायत होती जाती है।

शिकायतों की भी एक लंबी फहरिस्त तो होती है। बहुत सी शिकायतें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं, और बहुत सी ऐसी भी शिकायतें होती हैं कि जितना चाहो बदगुमान होके रह जाते हैं, वो दूर नहीं हो पाती। मोहब्बत है तो फिर इस तरह की शिकायतें क्यों हैं? और शिकायतें हैं तो क्या वहाँ मोहब्बत भी है? खैर, ये तो एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, और मोहब्बत में शिकायतें होती हैं और शिकायतों में मोहब्बत छुपी होती है। अब जब शिकायतों से हम आगे बढ़ जाएं, तो बेवफा से वफा और वफादारों से बेवफाई भी हो जाती है। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ऐ दोस्त हम जुदा हो जाएं।

0: प्यार में कौन भला बेवफा होना चाहेगा, सबको अपने प्यार की मंजिल प्यारी होती है। और ये प्यारा सा गीत आपने सुना फिल्म एक कली मुस्काई से, लता जी की आवाज़ में, संगीत मदन मोहन साहब का। और जब बात प्यार की हो और उसमें वफा बेवफाई की हो, तो जो मुकर जाए इस मोहब्बत से वही तो बेवफा होगा। पर ये भी सच है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता।
1: ना वफादारी।

फिल्म शालीमार से ये गीत सुन रहे थे आप किशोर कुमार की आवाज़ में, और बहुत ही प्यारा ये गीत, और इस गीत को जब भी सुनते हैं दिल से गुजर जाता है ये गीत। और रात सुरमई के सफ़र में खुशी हो गई, शिकवे हो गए, शिकायत हो गई, बेवफाई भी हो गई, और बेवफाई के बाद क्या उठता है? जी हाँ, दिल में दर्द का गुबार उठता है, और इस दर्द के लिए क्या कहें? दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है?

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म खूबसूरत से तरत अजीज साहब की आवाज में। कब ठहरेगा दर्द, कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी।

रात सुरमई का ये सफर यहीं पूरा हुआ जाता है और इसी के साथ दीजिए माधुरी को विदा। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 00861851428409 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 00861398999012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 9779851386807 और 9779701075000 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं का आभार व्यक्त करते हुए श्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके इस एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मेघालय मंत्रिमंडल ने चक्रवात के अलावा आंधी तूफान और तेज हवाओं को राज्य में स्थानीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य प्रशासनिक स्पष्टता देना और सुनिश्चित करना है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित समुदायों को समय पर राहत मिल सके। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River yesterday from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepalese citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Mr. Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, the Prime Minister said India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Prime Minister of Nepal Balendra Shah thanked Prime Minister Narendra Modi for his warm words of solidarity and offering all possible humanitarian assistance to the flood-hit country for the rescue and relief operations. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline plus 977-985-131-6807 plus 977-970-910-7500 and plus 977-981-032-6117. These emergency contact numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in 6 districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ।

कुछ रिश्ते शाम के सिंदूरी रंग जैसे होते हैं। जितनी देर रात गहरी होती जाती है, उतना ही प्रेम का रंग निखरता जाता है। किसी अपने का साथ हो तो साधारण सा दिन भी यादगार बन जाता है।

कभी कभी दिल की बात कहने के लिए शब्दों की नहीं होती जरूरत। नजर जिस ओर ठहर जाए, समझ लीजिए दिल ने अपना रास्ता चुन लिया है। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत भाषा शायद यही खामोश नजरें हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत देर तक साथ चलती हैं। दो नजरें जब चुपके से मिलती हैं, तो जैसे रात की खामोशी में कोई मीठा सा गीत बज उठता है।

पुराने दौर की मोहब्बत में एक संकोच था, एक इंतजार था, और छोटी सी झलक में भी एक बहुत सारा प्यार छिपा होता था। कभी एक मुस्कान काफी थी, कभी नजर को झुका लेना काफी था, कभी नजर का झुक जाना भी काफी था। जाना ही दिल की पूरी कहानी कह देता था।

तन्हाई में याद आते किसी अपने के एहसास में मिल जाती है। और इस सुहानी रात में बस इतना ही, छोड़ के जा रहे हैं एक प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी 4:10 पर प्रोग्राम अरुणिमा में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना हूं। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक आई बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-8999-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेन्द्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन्द्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव और राहत पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपये की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह

के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। यह संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ अनुशासित और खेल प्रेमी राष्ट्र के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। इस संवाद में युवाओं की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के केंद्र में रखा गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस गीत के साथ। गीत है फिल्म न्यू दिल्ली से, लता मंगेशकर और उनके साथियों की आवाज़ में। संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म आवारगी से लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में। संगीतकार अनुमलिक, गीतकार आनंद बख्शी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म खून भरी मांग से आशा भोसले और उनके साथियों की आवाज़ में, संगीतकार राजेश रोशन।

आपने गीत सुना फिल्म मासूम से अनूप घोषाल की आवाज़ में, संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार गुलजार। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म गीत गाता चल से, जसपाल सिंह और उनके साथियों की आवाज़ में।

अभी आपने गीत सुना फिल्म चुपके चुपके से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार एस जी बर्मन। और अब समय कह रहे कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले

ले छोड़ के जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म स्वदेश से, उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार AR रहमान। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश के खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। नेपाल तिब्बत सीमा के भुटकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल के कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में अचानक आई बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 00801851424905 पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए मानवीय सहायता की पेशकश की और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए C-130J विमान से मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिसलिन ने बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सुव्यवस्थित रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं, जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबेनी को 3-1 से और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत के साथ। गीत है फिल्म गोपाला कृष्ण से यशुदास और हेमलता की आवाज में। सुबह की पहली किरण हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितने ही बादल क्यों ना हो, उनके पीछे सूरज हमेशा मौजूद रहता है। दुख की बदली अगर मन पर छा भी जाए तो उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए। उम्मीद की एक छोटी सी किरण उसे उजाले में बदल सकती है। हर नई सुबह कहती है कल जो हुआ उसे जाने दो, आज जो है उसको मुस्कुरा कर जियो।

जिंदगी में कुछ पल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती बहुत बड़ी होती है। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाट और आसमान पर बिखरी सुनहरी रोशनी, ये छोटे छोटे पल ही तो जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। इसलिए आज की सुबह को कल की चिंता में मत खोइए, इस पल को पूरे मन से महसूस कीजिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मौसम सिर्फ बाहर नहीं बदलता, हमारे भीतर भी बदल सकता है। अगर मन में सकारात्मकता हो तो साधारण सा दिन भी सुहाना मौसम बन जाता है। आइए आज अपने मन का मौसम भी खुशनुमा रखें, चेहरे पर मुस्कान, दिल में उम्मीद और कदमों में आत्मविश्वास लेकर।